0: मार मैं पाचो
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटीविनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुन के रे वेर क्वारो
0: पियों चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेरा लोका कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुन क्रेवेर क्वारो
1: पियों चुन क्रेवेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचो
1: बीमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला
0: इटी यूनियो और रेडियो